नमस्कार, मैं पंडित राजीव जनार्दन। आप लोग अभी सुन रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आला।

मैंने तो पिछले जमाने में बहुत बहुत कमाल के गाने बजाने हुए हैं और बुजुर्गों ने ऐसा ऐसा गाया बजाया है कि जिसको सदियों हिस्ट्री भी याद रखेगी। आज मुझे एकदम ख्याल आ रहा है बजाते बजाते कि मैं आपको मेरे पिता श्री इनायत खान साहब की कुछ बंदिशें सुनाऊं। तो लीजिए।

कहानी सुना रहा हूं, इसकी अस्थाई में एक एक चिकारी है, एक एक चिकारी का गैप है, और अंतरे में दो दो चिकारी का गैप है। खाली इसका मजा ये लीजिए, ये देखिए कि कैसा खूबसूरत लपेट के आता है और अपने मुंह को पकड़ता है।

अभी आप सुन रहे थे तिलोश रेडियो पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आलाप। That was Alap, an Indian classical music radio show.